0: आपको यहाँ देखकर हमें बेहद खुशी हो रही है।
1: हमें आना ही पड़ा, आपने हमारा दिल जो जीत लिया।

0: जहां पना, आज पहली बार आपकी प्रजा ने आपका प्यार और अपनापन महसूस किया है और इसलिए आज ये आवाम गुस्ताखी की माफी चाहते हुए आपको नवाजना चाहती है अकबर के नाम से, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर।
1: हम इस तोहफे से बेहद खुश हैं, बहुत शुक्रिया, हम इसे कबूल करते हैं।
2: जलालुद्दीन।

0: 98.1 Better Music Hot FM.
1: Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official.
2: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले जब दिल मिले तब गुल खिले जब गुल खिले तब दिल मिले